0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान 9 बजे के थारू भाषा खोज खबर में अपने हुक्रहिन स्वागत बा। खोज खबर से मई छपिलाल चौधरी राम राम। अब अपने हुक्र सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो और नेपाली पात्रो में फेस सुन्ती बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से आज जेएनजी शहीद दिवस शहीद के समझना कई कर मना जाती देशभर सार्वजनिक विदा। ज्योतिनगर के बहिया पीड़ित बाल बालिका टोल विकास संस्था के आर्थिक सहयोग दाई बाबा बहिया में हेराइल पाछ बाल बालिका के बिचल्ले। हाल देश के ढेरनक ठाव में वर्षा हुई थी कुछ ठाव में भारी वर्षा के संभावना सतर्क अपनाई नागरिक है मौसम विद के आग्रह। ओएसीसी प्रीमियर कप में नेपालो हांगकांग बीच के खेल जारी। आप पूरा खबर जेएनजी आंदोलन के शहीद हुकन के समझना में सरकार से आज देशभर सार्वजनिक विदा दिलवा। 18 भदौ में बैठल मंत्रिपरिषद बैठक से जेएनजी आंदोलन हुईलक 23 भदौ के दिन है जेएनजी शहीद दिवस घोषणा करती आज देशभर सार्वजनिक विदा देना निर्णय करल रह। जेएनजी आंदोलन के एक वर्ष पूरा हुईलवा। सामाजिक संजाल ऊपर के प्रतिबंध में से शुरू हुईलक जेएनजी आंदोलन कर्मशः राज्य संचालन के शैली राजनीतिक नेतृत्व के कार्य क्षमता भ्रष्टाचार नातावाद बेरोजगारी सार्वजनिक सेवा व अवसर के असमानता विरूद्ध के आवाज में परिणत हुई रह। 23 भदौ में संघीय राजधानी काठमांडू में हुईलक प्रदर्शन में प्रहरी के गोली लाकर 19 जन के मृत्यु हुई रह। वह घटना के विरोध में 24 भदौ में मुलुकभर प्रदर्शन हुई रह। 2 दिन के प्रदर्शन के क्रम में सुरक्षाकर्मी व प्रदर्शनकारी समेत कई का 76 जना मुअल रह। कलशे सरकारी तथा निजी भौतिक संरचनाओं पर आगजनी समेत हुई रह। टीकापुर नगरपालिका वड़ा नंबर 3 में रहल महालक्ष्मी टोल विकास संस्था से ज्योतिनगर के रसुआ बहिया पीड़ित नगद 8,000 सहयोग करल बा। टीकापुर में संपर्कविहीन हुई ढेर बाट तहुन ई परिवार के नाजुक अवस्था हुईलक मार थोर से फे सहयोग राहत हुई कई का ऊ परिवार राहत के खाँचो हुईलक मार उसीन संदेश फे जाए कना हिसाब से सहयोग करल संस्था के सदस्य क्षेत्र बहादुर कटेल जानकारी देहल बाट। ई छूट सहयोग से और सहयोगी मन उग्र फे आपन सहयोग आग बढ़ाई कना उद्देश्य से टोल विकास संस्था मार्फत पीड़ित के घर सम्पुगल संस्था के सदस्य सरस्वती बीक बतैलबाट। भदौ 10 गते अलक रसुआ बहिया में टीकापुर नगरपालिका ज्योतिनगर के मणि ऋषि संजाल संपर्क विहीन हुई रह। वहां संग गोस्या मनोकला संजाल और छाई सुस्मिता संपर्क विहीन हुई बाट। वहां घर में 2 छाई और 1 छावा घर में छोड़कर गांव में हुईलक दीदी पूर्वा देवी ने उपाने आपन भदैया भदैया हेर दीही दीदी कहकर गैल बैशाख में 2 गोसिया गोसिना काम के सिलसिला में मणिश्री संजाल रसुआ गैल रह। रसुआ में अलग बहिया से वहां आभिन संपर्क में आयल नहीं हुई। यहां घर के अभिभावक विहीन बेर नमूना छाई नमूना संजाल आपन बाबा दाई के खोजी कई दे माख करल बाट। मणि ऋषि संजाल के परिवार विगत 3 वर्ष से टीकापुर के ज्योतिनगर में हर्कबहादुर रावल के घर में भाड़ा में बैठते आयल बाट। दाई बाबा उहाँले संपर्क विहीन हुई पाछ घर में क्यों काम करू या नहीं हुईलक मार कमैना मनई फे नहीं हुईलक मार बच्चा हुकहीन ढेरनक समस्या हुई बा। बच्चा हुकरा अब फुफुक सहारा में बैठल बाट। मणि ऋषि संजाल के बरकी छाई पूर्वा देवी ने उपाने मणि ऋषि संजाल के पूर्वा देवी ने उपाने अपन भदैया भदैन के ख्याल कर दी कई का काम में गैल फे रसुआ गैल रह। आप भैया से ये अवस्था आईल से भी दीदी है आप ये भतीजा भतीजोन के कसी का करना हो कई का भैया आई कैके लगती रहल दीदी पूर्वा ने बटैत पदौ 10 गते अलग बहिया में टीकापुर के 23 जना व्यक्ति हमी संपर्क विहीन रहल बाट खोजी तथा उद्धार के लाग काम जारी रहे फे आमिन सम ई मनन के खोजी हुई सैकल नहीं हो। सहयोग कार्यक्रम में संस्था के तरफ से कोषाध्यक्ष निर्मला उपाध्याय, सहसचिव दीपा बुढ़ा, सदस्य कलावती सरस्वती विश्वकर्मा, धीरेन्द्र बुढ़ा, बरघर मोहन कैला लगायत के उपस्थिति रहल रह। खोज खबर में हाल देश के ढेरनक ठाउँ में वर्षा हुईटी लगायत के खबर पलिबा सुनती रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: लो इति छिटो आमा बन्न लागो त सकि न सकि सबै काम गर्नु पर्छ काम गर्न विदेश जानु भएको छ के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन म त जन्म परे जस्तै लाग्छ। त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारि 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
2: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
3: हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै दुर्गा ज्वेलर्समा 1 नम्बर सुनबाट निर्मित माइली टिलरी, छड्के टिलरी, रामलीला झुम्का, पिजडा झुम्का, बाला, औठी, पेण्डल, चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुनचाँदीका गरगहनाहरू बिना रसायनका बनाइनुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
4: दुर्गा ज्वेलर्स बलभद्र चोक नमुना इन्टरप्राइजेस नजिकै टिकापुर कैलाली। सञ्चालक देव बहादुर सुनार। सम्पर्क नम्बर 98 68 40 16 60।
0: आप बचल खबर बैतडी के दोगड़ा केदार गाउँपालिका 5 विकटम्मा भास जाइबेर महाकाली राजमार्ग अवरुद्ध भिल्बा सड़क उपरमा भास कारण बैतडी जोड्न महाकाली राजमार्ग अवरुद्ध भिलखो। आज बिहान सड़क उपर से ढुंगा सहित के भास गिर के सड़क अवरुद्ध हुईलक। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडी के प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक कुमार राय जानकारी देहलबाट अब जेसीबी से सड़क में खसल भास हटैना काम हुईती रहल वहां जानकारी देहलबाट भासक कारण यातायात सेवा प्रभावित हुईलबा। हाल देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव रहलबा। हाल मनसून के न्यूनचापीय रेखा सदर ठाव से कुछ उत्तर रहलबा साथ उत्तर प्रदेश आसपास बनल न्यूनचापीय क्षेत्र के फे नेपाल में प्रभाव पड़लबा। अब सुदूरपश्चिम प्रदेश के ढेर ठाव में बादल बर्जी लागलबा कलसे मधेश बागमती गंडकी लुम्बिनी हो कर्णाली प्रदेश में साधारणतया बर्जी लगना रहलबा। कोशी मधेश लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के थोरसे ठाव में तथा बागमती प्रदेश के पहाड़ी भूभाग के एक दुई ठाव में हल्का से मध्यम वर्षा हुईती रहलबा। आज दोपहर फे देशभर साधारणतया बद्री लगुयाबा। कोशी बागमती और गंडकी प्रदेश के हिमाली भूभाग के कुछ ठाव में तथा लुम्बिनी कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रदेश के हिमाली भूभाग के थोरसे ठाव में मेघ गर्जन सहित चट्याङ सहित मध्यम सम्म के वर्षा हिमपात के सम्भावना बा। याकर साथ सुदूरपश्चिम और कोशी प्रदेश के पहाड़ी हो तराई भूभाग के एक दुई ठाव में भारी वर्षा के सम्भावना फे रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनाइलबा। सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णाली और लुम्बिनी प्रदेश के ऐना दुई तीन दिन समे वर्षा के सम्भावना रहल मौसमविद विभूति पोखरेल जानकारी देहलबाट। ऐना दुई तीन दिन समे वर्षा के सम्भावना रलकमा र सुदूरपश्चिम प्रदेश के ढेरनक ठाउँमा बहिया पहिरो बहिया भास तथा भूच्छय हाई सेकना ओ लदिया में पानी के बहाव बढ़ावे डुबान तथा कटान के समस्या हुई सेकना हुईलक मार नागरिक उक्रेनर सतर्कता अपनाए फे मौसमविद पोखरेल अनुरोध करल बाट। हमार समाज में एक ठो कहाइबा बात सुनना बुधन के आगी तपना मुड़ा के कह हंस बुढ़ा पाखा कलक अनुभव के खानी हुई तो वहां उनकन के जीवन में ढेरनक अनुभव के भोगी होश्या कल रथ वो हमारा मुड़ा से निकल ताप धरीलो रापीलो रहत वस्ते हैं दूर से फिर ताप देह सकट वृद्ध वृद्धा होकर परिवार और समाज के अमूल्य संपत्ति हुई तो उनकन के आपन जीवन के लम्बा समय परिवार समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान दिल रथ उनकन संग जीवन के ढेरनक परिस्थिति के अनुभव ज्ञान और सीख रहत वो हमारा बुधायल मन इनके सम्मान और उचित हेरचाह करना हमारी जिम्मेवारी हो। बुधायल हुकन के लवो पुस्ता अपन अनुभव से सही मार्ग निर्देशन देथ हुकर बाल बालिका तथा युवा असल संस्कार अनुशासन नैतिकता ईमानदारीता ओ सामाजिक व्यवहार सिखैथ संग अपन भाषा संस्कृति परम्परा रीति रिवाज ओ संस्कार एक पुस्ता से और पुस्ता में हस्तांतरण करथ कर हुकर महत्वपूर्ण भूमिका रथिन हुकर समाज के इतिहास और विगत के घटना के प्रत्यक्ष साक्षी फेरथ परिवार में कोनो समस्या व महत्वपूर्ण निर्णय लेबेर बुधायल हुकन के अनुभव और सुझाव ध्यानक उपयोगी हुईत हुकन के परिवार के सदस्य हुकन बीच प्रेम सद्भाव और एकता कायम कर सहयोग करत हुकन के जीवन में करल संघर्ष मेहनत और सफलता के खिस्सा से लौव पुस्ता प्रेरणा फे दिहत। खोज खबर में बचल खबर परिवार सुनती रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
2: टीकापुर नगरपालिका को आयरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम संबंधी सूचना।
3: टीकापुर नगरपालिका अंतर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
2: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
5: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
6: वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
5: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
6: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी ही जाए।
7: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिंबू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846777417।
0: खोज खबर में आप बचल खबर प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह असो 6 गते संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में संबोधन कर न्यूयॉर्क जविया हिल बाट भोटेकोशी बहिया पाछ जलवायु परिवर्तन के असर बारे राष्ट्र संघ के ध्यानाकर्षण कराई प्रधानमंत्री शाह जो जाय लागल हुई ई आघ परराष्ट्र मंत्री के जैनातय हुई रह बहिया पाछ प्रधानमंत्री शाह जो नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करती जाय लागल हुई प्रधानमंत्री के भ्रमण मंत्री प्रतिनिधि मंडल सहित 10 जाहिन सम्म के हुईना बतागिल बा। मलेशिया में जारी एसीसी प्रीमियर कप 2026 में समूह चरण के अंतिम खेल में नेपाल हांगकांग के सामना करती बा ई दुई टोली बीच के खेल अब जारी बा ई खेल में नेपाल सामू समूह विजेता बनना मौका बा जारी प्रतियोगितामा तीन खेल खेल स्याकल नेपाल अपराजित बा नेपाल ताजा स्थितिमा बा नेपाल ताजा स्थितिमा छ अंक सहित तालिका के शीर्ष स्थानमा बा जारी खेलमा हङकङ के ई समाचार तयार पारत सम पाँच विकेट के क्षतिमा 26 ओभर खेल्ती 115 रन बनाइल बा नेपाल प्रतियोगिता के पहिला खेलमा बहराइन विरूद्ध 7 विकेट आयोजक मलेसिया विरूद्ध 6 विकेट तथा साउदी अरेबिया विरूद्ध 5 विकेट के जीत निकाल नेपाल आज खेलमा फे सह जीत दर्ता गर्न योजनामा बा उहाँ हङकङ भर 3 खेल खेलबे 2 खेलमा जीत हो 1 खेलमा हार बेहोर सकल बा यह समाचार संग 9 बजे के थारू भाषा खोज खबर ओराइल अंतिम में जैती जैती खबर के मुख्य शीर्षक एक फेरा फेर से आज जेनजी शहीद दिवस शहीद के समझना कई का मना जैती देशभर सार्वजनिक विदा ज्योतिनगर के बहिया पीड़ित बाल बालिका टोल विकास संस्था से आर्थिक सहयोग डाई बाबा बहिया में हेराइल पाच बाल बालिका की बिचली हाल देश के ढेरनक ठाउँ में वर्षा हुईटी कुछ ठाउँ में भारी वर्षा के संभावना सतर्क अपनाई नागरिक मौसम विद के आग्रह ओएसीसी प्रीमियर कप में नेपाल और हङकङ बीच के खेल जारी जी अब खोज खबर अतः प्राविधिक मित्र धन्यवाद देती अब खोज खबर से मई छपीलाल चौधरी फिर विदा हुई सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था रिलायबल लाइफ सदै भरिलाई।
1: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: कबू कापी रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा के होस्ट बाटिन गटीलो ठाउँ से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिपठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत कहाँ हो टीकापुर मरलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी एक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ट्ज़।

0: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका दिवस 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै रडगैया झोला उद्योगमा विभिन्न डिजाइनका झोला सुगठ मूल्यमा पाइन्छन्। जस्तै स्कूल ब्याग, क्यारिङ ब्याग, लगेज ब्याग, फाइल ब्याग लगायतका विभिन्न डिजाइनका ब्याग अर्डर गरे अनुसार बनाइन्छ र पुरानो बिग्रेको झोला मरमत गरिन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
1: रडगैया झोला उद्योग, मुनुवा रोड, टिकापुर, कैलाली। संचालक रामप्रसाद चौधरी।
2: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सामुहिक ज्वेलर्समा सुनबाट निर्मित विभिन्न डिजाइनका गरगहनाहरू बनाइन्छ। जस्तै रानीहार, हार, छटके तिलहरी, माइले तिलहरी, नौगेरी, मंगल सूत्र, बाला, औठी, चापकी, झुम्का अर्डर गरे अनुसार खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। सामुएल ज्वेलर्स, बलबर्दा चोक, टिकापुर, कैलाली। संचालक सामुएल सुनार।
3: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? पाछ से शुरू करल मने घर सिर्जार सेक्ल।
4: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहीं हो का
3: मिस्तरान वर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेला बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना कबू कहूँ रा घूम जाए ता था पाए।
5: यूपीवीसी ब्रांड के मुआ का द्वार, पार्टीशन, स्टील की रेलिंग, आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना, खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना, विशेषता हुई लक मुआ का द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
4: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस, जमरा के उपार, टीकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहन राज भाट। मोबाइल नंबर 9848513426।

0: महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै इन्द्रेणी ज्वेलर्समा माइली तिलहरी, छटके तिलहरी, रामलीला झाला, पिजडा झुम्का, बाला, एक आनामा एक जोडी चुरा, बबी औठी, बेरुवा औठी, पेन्डल, एकदेखि चार आनासम्म कनौगेडी हारहरू, चन्द्रमा, मोटी चन्द्रमा र अर्डर अनुसार सुनचाँदीका गरगहना बिना रसायनका बनाइनुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ।
1: इन्द्रेणी ज्वेलर्स, बलभद्र चोक, टिकापुर, कैलाली। संचालक रणबहादुर सुनार। सम्पर्क नम्बर 98484-40019। हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै लक्ष्मी आभूषण भण्डारमा छड्के तिलहरी, माइली तिलहरी, रामलीला झुम्का, पिजडा झुम्का, बाला औठी, पेन्डल, चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुनचाँदीका गरगहनाहरू सुपथ मूल्यमा बनाइन्छ। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। लक्ष्मी आभूषण भण्डार, सिद्धार्थ चोक, टिकापुर, कैलाली। संचालक प्रकाश भण्डारी। सम्पर्क नम्बर 98484-55195।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरे शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाढ़, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।
2: लौना सारे भोक लाग्यो भने आज त तन्नै नास्ता गर्न मन लागिरा छ। हैन, यो टीकापुर बजारमा मिठो चिकन राइस कहाँ पाइन्छ होला?
0: साच्चै हो र भोक लागेको, मलाई पनि चिकन चाउमिन खान मन लागेको छ। त्यसो भए जाऊ न लक्ष्मी कटेज एन खाजा घरमा, त्यहाँ त एकदम शुद्ध, सफा र मिठो परिकारहरू पाइन्छ।
2: ए हो र, त्यसो भए जाऊ न, जाऊ, सँगै जाऊ, तन्नै खाएर आउला।
0: तपाईँलाई पनि नास्ता खान मन छ भने लक्ष्मी कटेज एन खाजा घरलाई सम्झिनुहोस्। लक्ष्मी कटेज एन्ड खाजा घरमा चिया, नास्ता, चाउमिन, चिकन राइस, चिकन चाउमिन, छोला समोसा, दुध, दही, घिउ, चिसो लगायतका विभिन्न किसिमका खाजाको आइटम पाइन्छन्। एकचोटि सेवा गर्ने मौका दिनुहोला।
1: लक्ष्मी कटेज एन्ड खाजा घर, सामुदायिक एफएम नजिकै, प्रोप्राइटर लोकराज खनाल। सम्पर्क नम्बर 98481-69-64।
6: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम, 101 मेगाहर्ज।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके सन्ध्या 5 बजे थारू भाषा खोज खबरमा आफ्नो स्वागत बा खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम अपनाउक्राब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो और नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से कर्णाली लद्देमन अस्थायी तटबंध निर्माण के लाग संबंधित निकाय हन अनुरोध करना निर्णय जेएनजी आन्दोलन में कैलाली कारागार से भगलग 202 कैदी बंदी आमीन फरार टीकापुर में किट जन्य रोग रोकथाम संबंधी स्वास्थ्यकर्मी अभिमुखीकरण किट जन्य रोग से बच लामखुट्टे के टोकाई से बचपना डाक्टर भीम प्रसाद सापकोटा के कहाई ओ हिमालय माध्यमिक विद्यालय के सामाजिक परीक्षण वरायल आप खोज खबर विस्तारमा टीकापुर नगर विपद व्यवस्थापन समितिकै बैठक से कर्णाली लड्डेमा अस्थायी तटबन्ध निर्माणकै लागि सम्बन्धित निकाय अनुरोध गर्न निर्णय कलबा भदौ 20 गते थेसे निरन्तर हुइतिरलक वर्षा से कर्णाली लड्डे बहाव बहर्ती गैलक मर्से लद्या तीव्र कटान कर्ती बस्ती नै उच्च जोखिममा रहलक मर्से तत्काल अस्थायी तटबन्ध निर्माणकै लागि सम्बन्धित निकाय अनुरोध गर्न निर्णय हुइलबा टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 बढ़ी जोखिम मनबा वडा मन रहलक विपद के अवस्था बारे जानकारी ओडाध्यक्ष लालवीर थारू देलबाट कर्णाली लद्या कटान के कारण टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 पार्क के पिकनिक स्पोट ठेसे 500 मीटर उत्तर कटान हुई रहलबा लद्या कटान के कारण टीकापुर पार्क वडा नम्बर 5, 6, 7, 8 के बस्ती तथा समुदाय जोखिम में रहलबा ज्याकर नियन्त्रण के लागि रानी जमरा कुलहरिया सिंचाई आयोजना टीकापुर बोल्डर राखन तटबन्ध निर्माण के लागि अनुरोध गर्न निर्णय हुइलबा वाकरसँग टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 श्रीलंका तथा टोली गाउँमन कटान के उच्च जोखिम बा वाका लागि कर्णाली लद्या व्यवस्थापन आयोजना राजापुर बर्दियाहा 200 मीटर क्षेत्रमा बोल्डर ढर्क तटबन्ध निर्माण के लाग अनुरोध गर्न निर्णय हुइलबा वडा नम्बर 8 मन विपदकै अवस्था वडा नम्बर 8 के विपद के अवस्था बारे वडा नम्बर 8 के वडा अध्यक्ष दीर्घबहादुर थकुल्ला जानकारी देलबाट लद्या कटान के कारण बेडवास के बनुआ रहलक सत्ती कर्णाली सामुदायिक वन जोखिम में पर्ती गेलबा याकर बारे वडा नम्बर 7 के वडा अध्यक्ष एके प्रसाद नेउपाने जानकारी देलबाट नगर स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति के बैठक से कलक निर्णय बारे जानकारी वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख निर्मला चौधरी करैलाबाट नदी कटान के समस्या समाधान के लाग पहल हुइतिरल कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नगरजी पटिलाबाट जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 अमरावती स्थित हिमालय राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय के सामाजिक परीक्षण सार्वजनिक सुन्नै हुइलबा सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 के वडा अध्यक्ष खकेन्द्र भण्डारी विद्यार्थी उनकन घर से व्यवहारिक शिक्षा दिए आवश्यक रहलक बटुइलबाट वहाँ शिक्षक दोष दिहल सेफे अभिभावक सचेत हुइना जरूरी रहलक बटुइलबाट जानकी गाउँपालिका शिक्षा शाखा के शिक्षा अधिकृत शंकर नेउपाने विद्यालयमा आर्थिक स्रोतको कमी से समस्या हुइलक बटवेटी मुहार बच्चा कौन अवस्थामा बा का कर्तिबा कैक अभिभावक हन निगरानी गर आग्रह कलबाट आर्थिक वर्ष 2082-83 के 1,27,18,725 बराबर के आय व्यय प्रस्तुत कैगिल्बा आय व्यय प्रस्तुत सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर्ती सामाजिक लेखा परीक्षण समिति सदस्य विष्णु शर्मा सल्लाह सुझाव समेत प्रस्तुत कलबाट जनता आधारभूत विद्यालय के प्रधानाध्यापक टेक बहादुर सार्की सामाजिक परीक्षण कालके दिन योजना बनैना शिक्षा गुणस्तर बनाएक लागि मार्गदर्शन गर्न हुइलक मर्से यी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहलक बटुइलबाट कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद अधिकारी अमरावती सामुदायिक वनके अध्यक्ष जमान सिंह साउट समाजसेवी बुद्धिजीवी जनक थापा भीमबहादुर रावल लगायत बोल्न रह कार्यक्रममा बोल्न बक्टाङ्क विद्यालयकै गुणस्तरके लागि सबैजना आफ्न आफ्न ठाउँसे लग्न आवश्यक रहलकमा जोर देलबाट अभिभावक संघकै अध्यक्ष विनोद भण्डारीकी अध्यक्षतामा हुइल कार्यक्रममा स्वागत शिक्षक मानसिंह चौधरी कर्लर कलसे कार्यक्रम सञ्चालन शिक्षक हरकदेव कोटा कर्लर खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछैनबाटी सुन्तिरही सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं
1: के छ त विकल्प
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन
2: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
4: ईसीजी सेवा
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
3: फोन नम्बर 98484 27359 र 98482 43 59 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बारो टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै
5: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एकछु भएर हेर्ने बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने साइकल होस् या गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ
6: जानकी गाउँपालिका 1 नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
7: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ
8: सुन्नुहोस् न यसपालि तीजका लागि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु
9: हुन्छ नि तर कहाँबाट किन्ने त
8: अब किन टाढा जानु सिर्जना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे
9: ए हो र गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त
8: हुन्छ नि आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ अनि विश्वासिलो सेवा पनि
9: त्यसो भए आजै जाउँला नि
8: ल अरूलाई पनि भनौँ है
9: सुनको चमक आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
7: सिर्जना सुन चाँदी पसल तपाईँको रोजाए हाम्रो जिम्मेवारी
9: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा सञ्चालक रूपलाल सुनार सम्पर्क नम्बर 98095 43 893
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा टिकापुरमा किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौडाकी आयोजनामा टिकापुरमा स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी केला अभिमुखीकरण तालिम हुइलबा तीन दिने तालिममा टिकापुर सहित कैलालीके 25 जना स्वास्थ्य कर्मी सहभागी रह कैलालीके टिकापुर अस्पताल मालाखेती लम्की चोहा कैलाली नगर अस्पताल घोडाघोडी किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौडाका निर्देशक डाक्टर भीमप्रसाद सापकोटा किटजन्य रोकथामकै लागि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी सचेत र जिम्मेवारी बनाए तालिम आयोजना कलक बटुलेबाट गैलक वर्ष भदौ 2324 गते जेएनजी आन्दोलनले देशकै राजनीतिको सामाजिक परिदृश्यकै सँग समाज सार्वजनिक तथा निजी संरचनामा भारी क्षति पुगेल बा आन्दोलनकै क्रममा 76 जना ज्यान गुमैलबाट एक वर्ष पाछ उह सड़क ओ संरचनाकै दृश्य फेरगिल्बा भटकलक ओ जरलक संरचना पुननिर्माण हुइतिबा तर आन्दोलनसे उठेलक सुशासन जवाबदेहता संस्थागत सुधारकै प्रश्न आमिन बहसकै केन्द्र मनबा जेएनजी आन्दोलनकै क्रममा कैलारी कारागारसे भगलक 19 भारतीय नागरिक सहित 202 कैदी बन्दी आमिन फरार हलबाट आन्दोलनकै क्रममा कारागारमा तोडफोड हुइल्पाछ गैलक भदौ 24 गते 665 कैदी बन्दी कारागारसे बाहिर गेल रह कारागारकै अनुसार हालसम्म 463 कैदी बन्दी कारागार घुमस्याकलबाट घुमलक मध्ये कतराजना बाँकी कैद भुक्तान कैकन छुटसेकलक निमित्त जेलर बसन्त जोशी जानकारी करैलबाट आन्दोलनकै क्रममा कारागारमा रहलक कुल 667 कैदी बन्दी मध्ये एकजना बेरम्या होक अस्पतालमा भर्ना हुइलक ओ और एकजना कारागारमा बैठिरहलबाट बाँकी कैदी बन्दी कारागारसे बाहिर गेलबाट फरार कैदी बन्दी हन कारागार घुम जिल्ला प्रशासन कार्यालय आग्रह गर्दै आइलबा प्रहरी समेत फरार कैदी बन्दीकै खोजी गर्तिरलक जनैलबा यही बीचमा आन्दोलनकै क्रममा क्षतिग्रस्त कारागार प्रशासन कार्यालय मर्मत कैगिलमा कारागारकै बाहिरकी सुरक्षाकै लागि भारे पर्खाल निर्माण करगिल बा कलसे कैदी बन्दी धरना लौव भवन निर्माण के लाग ठेक्का प्रक्रिया फे आग बढ़ागिलक निमित्त जेलर जोशी बटुलबाट जघन्य अपराधमा संलग्न होक फरार हुइलक कैदी बन्दी आमिन सम्पर्कमा नै ऐलक जनाइल बा फरार मध्ये भारतीय नागरिक समेत रहलक उर्से हुकनके खोजी के लाग प्रहरी आवश्यक प्रयास गर्दिरलक जनागिल बा कैलाली से भन्सार छलीमा सामान नियन्त्रणमा लेगिल्बा जिल्लाके कैलारी गाउँपालिका पाँच छोटकी पलियासे अवैध रूपमा भारत से भन्सार छली कर्कलनलक अन्ताजी मूल्य 1,23,000 के सामान प्रहरी नियन्त्रणमा लेलक हो ऊ सामान ऊ मूल्य बराबर के सुटपीस साड़ी लगायत के सामान सोमबार रातका जिल्ला प्रहरी कार्यालय हसुल्या कैलाली से खटगिलक प्रहरी व्यवहारी से अवस्थामा फेला पार्क नियन्त्रणमा लेलक जनाकिल्बा विभिन्न मुद्दामा फरार कैलालीकै तीनजना पक्राउ परलबाट जिल्ला अदालत कैलालीकै विभिन्न मितिकै फैसलासे सजाय टोक फरार रहलक प्रतिवादी हन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली तथा माटहटके कार्यालयसे खटगिलक टोली पक्राउ करलक हो पक्राउ पर्नामा ज्यान मर्ना उद्योग मुद्दामा 2 वर्ष कैद 20,000 रूपियाँ जरिवाना टोगिलक धनगढ़ी उपमहानगरपालिका 8 के 38 वर्षीय नन्दलाल राणा रहलबाट वस्तक अंगभंग मुद्दामा 3 महिना कैद सजाय टोगिलक गोदावरी नगरपालिका 1 के 30 वर्षीय नवीन विस्तफे पक्राउ परलबाट वस्तक बैंकिङ कसुर मुद्दामा 1 महिना 20 दिन कैद 1,40,000 रूपियाँ जरिवाना टोगिलक गोदावरी नगरपालिका 12 के 39 वर्षीय पदम बहादुर बोहराना जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर से खटगिलक टोली कञ्चनपुर क्षेत्रमा फेला पार्क पक्राउ कलक प्रहरी से जनागिल्बा खोज खबरमा फेरफे विश्राम पाछ ऐनिनीबाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम
10: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
11: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
10: ए हो त कहाँ पाइरहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका
11: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
10: अब त म ढुक्क
12: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
11: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टिकापुर कैलाली
13: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
14: असोज 3 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
13: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रायसिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोग समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
14: डाक्टर आउने दिन असोज 3 गते पहिलो शनिबार
13: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825637772।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तथा माताहतकै निकाय विरूद्ध अदालतमा दायर हुने मुद्दाकै संख्या 5-3 वर्षमा उल्लेखीय रूपमा बढ़ल बा। मुख्य न्यायाधिवक्ताकै कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशकै तथ्याङ्कमा विशेषकैका आर्थिक वर्ष 2082-83 मन आगत वर्षकै तुलनामा 1,78 मुद्दा बढ़ल बा। आर्थिक वर्ष 2081-81 आगत वर्ष से जिम्मेवारी सलग 74 व लौ 35 कैका कुल 109 मुद्दा लागत मन रह, ऊ मध्ये 46 ठो मुद्दा फर्से ठोक 63 ठो मुद्दा बाँकी रहल रह, कुल लगत के आधार मन ऊ वर्ष करिब 42% मुद्दा फर्से ठुल रह। वस्तकन आर्थिक वर्ष 2081-82 आगत वर्ष से 61 ठो मुद्दा जिम्मेवारी सरका आइल कलसे 55 ठो लौ मुद्दा थप्कन कुल 116 पुगल रह। ऊ अवधिमा 34 ठो मुद्दा फर्से ठुबेर 82 मुद्दा बाँकी रह, यही वर्ष करिब 29% कलक मुद्दा फर्से ठुल रह। आर्थिक वर्ष 2082-83 मन आगत वर्ष से जिम्मेवारी सलग 82 ओ लौ 112 कैखन कुल 194 मुद्दा लगत मन रह, ऊ मध्ये 87 ठो मुद्दा फर्सेट व्हील कलसे 107 मुद्दा बाँकी बा। कुल लगत के आधार मन यही वर्ष करिब 45% मुद्दा फर्सेट व्हील रह, ओसिकन आगत वर्ष के तुलना मन फर्सेट के दर में उल्लेख्य सुधार हुई लसे फे बाँकी मुद्दा के संख्या आमीन बढ़ल बा। 3 वर्ष के तथ्यांक हेरबेर प्रदेश सरकार तथा माताहतके निकाय विरूद्ध लौ मुद्दा थप्ना क्रम निरन्तर बढ़ती रलग देख गिल्बा। आर्थिक वर्ष 2081-81 मन 35 लौ मुद्दा थपगिलक मन 81-82 मन 55 व 82-83 मन 112 थपगिल्बा। 2 वर्ष के अवधि मन लौ मुद्दा के संख्या 3 गुना से फे बढ़ी होइलक हो। विशेष कैकन 82-83 मन थपगिलक 112 मुद्दा उह वर्ष के कुल 194 मुद्दा के करीब 58% हो। समाचार के संग खोज खबर ओराल अन्तिममा जैति जैति खबर के मुख्य शीर्षक फेरसे कर्णाली लद्देमा अस्थायी तटबन्ध निर्माणकै लागि टिकापुरमा निर्माणकै लागि सम्बन्धित निकाय हन अनुरोध गर्न निर्णय। जेएनजी आन्दोलनमा कैलाली कारागार से भगलग 202 कैदी बन्दी आमीन फरा। टिकापुर मन किटजन्य रोग रोकथाम सम्बन्धी स्वास्थ्यकर्मी अभिमुखीकरण। किटजन्य रोग से बचला फुन टेके टोकाई से बचपना डाक्टर भीम प्रसाद सापकोटा के कहाई। हिमालय राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय के सामाजिक परीक्षण ओराइल दिताबकला थारू भाषा खोज खबर अत्र अरू समाचार 6 बजे नेपाली भाषामा खोज खबर सुन सक्बी। अब खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद दिती। मै गीता फी विदाई सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम सुन्ती रवि राम राम।
15: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै लक्की ट्रेडर्स टिकापुरमा एनटीसी र एनसीएलको सिम कार्ड, ई सिम पाइनुका साथै फोटोकपी, लिमिनेसन, प्रिन्ट, ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ।
16: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणालीद्वारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार्ट पुर्दा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। साथै 5 मिनटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ। मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ।
17: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा सञ्चालक खगेन्द्र चौधरी सम्पर्क नम्बर 9868551000।
10: घर त जेनतेन लगाइयो, अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
11: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
10: ए हो त, कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका?
11: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
10: अब त म ढुक्क।
12: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट।
11: मोबाइल नम्बर 9848513426। जमरापारी टिकापुर कैलाली।
16: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै रडगैया झोला उद्योगमा विभिन्न डिजाइनका झोला सुगठ मूल्यमा पाइन्छन्। जस्तै स्कूल ब्याग, क्यारिङ ब्याग, लगेज ब्याग, फाइल ब्याग लगायतका विभिन्न डिजाइनका ब्याग अर्डर गरे अनुसार बनाइन्छ र पुरानो बिग्रेको झोला मरमत गरिन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
18: रडगैया झोला उद्योग, मुनुवा रोड, टिकापुर, कैलाली। संचालक रामप्रसाद चौधरी।
19: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सामुहिक ज्वेलर्समा सुनबाट निर्मित विभिन्न डिजाइनका गरगहनाहरू बनाइन्छ। जस्तै तानीहार, हार, छटके तिलहरी, माइले तिलहरी, नौगेडी, मोगल सूत्र, बाला, औठी, चापकी, झुम्का अर्डर गरे अनुसार खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। सामुएल ज्वेलर्स बलबर्द

0: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एक छेउ भएर हिँड्ने, बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने, साइकल होसिया गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं। कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं। साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ।
1: जानकी गाउँपालिका एक नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाइम, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
1: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाग, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
0: टीकापुर को विकास का लागि के गर्दैछ नगरपालिका?
4: नगर विकास का लागि नगरवासी को दायित्व के हुनु पर्छ?
5: नगर विकासमा नागरिकको सहभागिता कसरी बढाउने र नगरपालिकाको काम कारबाही र सेवा प्रभाव बारे जानकारी दिने कार्यक्रम हाम्रो टीकापुर।
0: टीकापुर नगर कार्यपालिकाको सहयोगमा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमको उत्पादन कार्यक्रम हाम्रो टीकापुर हरेक साताको बिहिबार बिहान 7:30 बजे र पुनः प्रसारण
6: बिहिबार दिउँसो 3 बजे सुन्न सक्नुहुनेछ।

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जै बो पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान वर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो होना कबू कहूँ रख घूम जाए था पाए
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436
3: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपालीजनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै हार्दिक सुनचानी पसलमा छक्की तिलहरी माइली तिलहरी रानी हार हार मंगलसूत्र चापकी पेन्डल बाला औठी चन्द्रमा काटा नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपथ मूल्यमा बनाइन्छ एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला
4: हार्दिक सुन चाँदी पसल सरकारी अस्पतालको भित्री रोड सञ्चालक शंकर साहू सम्पर्क नम्बर 9848

0: दाई बेड भूख लगता खाजा बाकी नहीं। ए काकी फे आयल बाटी राम राम काकी।
1: राम राम हो नानी मजा बाटो ऐसन ले छाइट भारे हो से अकल बाजे आप हली भुआस कर दिए पड़ल है समय में भुआस कर दिल से आपन जिम्मेवारी फे वरी ना और जनक बात फे सुननी पड़ना।
2: आ दीदी फे वो बेला आपन कटरा पढ़ना इच्छा रह छुट्टी में भुआस कर देखा मुआ दाई बाबा कर लग गलती जस्ता फिर डोरे नी चाहू दीदी मैं चाहे ये बाल विवाह करन नी चाहू ये बाल विवाह नी करन दीदी।
3: शारीरिक को मानसिक रूप में सक्षम नहीं होकर किशोरावस्था में जो छाइक भुआस कह देना से दाई वो बच्चा दोनों के स्वास्थ्य खतरा में पड़ सकत उ हिंसा के शिकार बन सकत वही विद्यालय छोड़ पड़ना बाध्यता हुई सकती उ रोजगार फिर नहीं पाए वो गरीबी में बांच बाध्य हुई पड़थिन। नेपाल के कानून अनुसार 20 वर्ष नहीं पुगे भुआस कराई नहीं हुई असिन करैल से 3 वर्ष सम कैद वो 30,000 रूपया सम जरिमाना हुई सकत वो असिन भुआस कानूनी मान्यता
1: सिकापुर नगर पालिका ओडा नंबर 3 से देगिलक जनहित में जारी संदेश।
4: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै एक नम्बर सुनबाट निर्मित अत्याधुनिक डिजाइनका गहना पाइनुका साथै अर्डर अनुसार गहना सुपथ मूल्यमा बनाइन्छ।
5: न्यू अछाम जालपडेवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चौक टिकापुर कैलाली संचालन।

महाराज परीक्षित का प्रतिश्रुति स्वामी ले आ गया गौर नो बोलो तो सौन का दृश्य प्रणाली बने रहा महाराज परीक्षित लाए श्रीमद भागवत को महत्व को बारे सारा कुरा को प्रमाण गौर नो बोलो तो सौन का दृश्य प्रणाली और इसी प्रसंग को बीच में अब कट्टी देखने तला सात लोग को परिकल्पना गर्न महाराज कट्टी देखने तला तल बीतल सुतल तला तल सात पात्र महापातल को परिकल्पना गर्नु कट्टी देखने माथि भूर लोग भोर लोग मोहर लोग जन लोग तपो लोग स्वर लोग सत्य लोग को परिकल्पना गर्नु विश्व ब्रह्मांड सारा आपू मन निर्धारित निर्णय गर्नु भनिकन राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी ने भागवत को मूल सिद्धांत में फरक नपर्ने मत ल्याएर प्रमाण गराउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्म को कथा है सत्यबाट जय बोलो श्रीमद भागवत महाप्राण को मुरारे।

महाराज परीक्षित सुखदेव स्वामी ने बताओ ऐसे प्रसंग को बीचवा अब यो विश्व ब्रह्मांड उत्पादन को विषय को लाई प्रश्न गर्नु भएको छ भगवान यो विश्व ब्रह्मांड कसरी उत्पादन भयो यसदेखि पछाडिबाट सृष्टि को प्रकरण में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र यो चार जात को प्रकरण में व्याख्या गरेको छ भिन्न भिन्न मत को प्रभाव बाट इनको विषय में पनि केही प्रकाश पारी वर्षन्छ कि भनिकन विनती गर्ने वाला राजा परीक्षित लाई सुखदेव स्वामी ने बड़ा गंभीर वाणी में आपको भाषा प्रस्तुत करते हुए भन्ने सम्बन्ध को कथा यस अध्याय जय बोलो श्रीमद भागवत महाप्राण को।